0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मदात नहीं शिकारी पूरे टाइलेट मलाई चाहिए
2: VFX सिनेमाज कोराही दश नारायणपुर सौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम नाम सत्य
3: हेलो फ्रम अमेरिका वाक वाका वाशिङटन डीसी जस्ट डब्लु बस हेलो हेलो हेलो
2: त्यसै गरी 2083 साल वैशाख 1 गतेदेखि नेपाली कथानक चलचित्र पहाड़ प्रदर्शन हुने पनि जानकारी गराउँदछौ
4: घर घर अनि गृहिणीको साथ हुलासले बनाउँदैछ परिवार एक साथ
5: बुबालाई हुलास आटाको रोटीको स्वाद होस् वा आमालाई बासमती चामलको भात खानामा रहर दालको साथ हुन्छन् सबै खाएर गदगद हुलासको पापड़
4: हुलास फुसका उत्पादहरू हुलास आटा हुलास बासमती राइस जिरा मसिनो राइस
5: हुलासको कुरुम कुरुम चिउरा हुलासको इडली राइस
4: हुलासले बनाउँदैछ परिवार एकसाथ

9 इंचको शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: वाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हाद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादवद्वारा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेलद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
5: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसीद्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
6: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
7: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङसे स्थापना करलक पत्रकार कृष्णसेन इच्छुक पत्रकारिता पुरस्कार जनक नेपाली हन प्रदान कै राखल। पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकक 24 स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ ओ प्रेस सेन्टर नेपालसे संयुक्त रूपमा आज एक कार्यक्रमका आयोजना गरिकन पत्रकार नेपाली हन उक्त पुरस्कार प्रदान गरिगलक हो। उस्तक प्रेस सेन्टर नेपालको स्थापना गरिगलक कृष्णसेन इच्छुक पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार भूपेन्द्र ओली हन ओ लोकबा कुमारी रिजाल पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार सन्तोष डाङ्गी हन प्रदान करगिल बा। स्मृति दिवसको अवसरमा कार्यक्रममा बरपौना वरिष्ठ पत्रकार नारायण प्रसाद शर्मासे पत्रकार इच्छुकसे लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनाक लाग ओ जनताको पक्षमा चलिलक कलमबारी निष्ठाको पत्रकारितामा लाग प्रेरित करलक बटवा रखल। पाछक समय पत्रकारितामा कुछ विकृति ओ विसंगति देखा पर शुरू हुइलक गति उहिएन चिरकन अगाडि बर पर्ना बटवा रखल। बरपौना शर्मासे पत्रकार इच्छुकसे देखिलक डगरमा अखिक पत्रकारिता न्याङ्ग सेक्ल सेकल इच्छुक प्रति सच्चा सम्मान हुइनाफे बतवा रखल। पत्रकार महासंघ दाङ अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको अध्यक्षतामा हुइल कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सुशील गौतम महासंघ पूर्व अध्यक्ष केबी मसाल पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्ष प्रताप रेग्मी महासंघ पूर्व अध्यक्ष केएल बुढाथोकी पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष उदय जेम पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अजयदीप शर्मा पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव पाण्डव शर्मा पाण्डव प्रसाद शर्मा लोक कुमारी रिजाल पुरस्कार ओ स्थापना कर्ता अर्जुन कुमार रिजाल पुरस्कृत व्यक्तित्व पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव भूपेन्द्र ओली लगायतले शुभकामना व्यक्त गरल रह। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसे मनसून जन्य विपद प्रति कार्यकलाक पूर्व तयारीमा जुट माथत्क निकाय हन निर्देशन दिए रखल। प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको 13 बैठक हन आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यसे पानीजन्य विपदको कारण यी वर्ष क्षति बहर सेक्न अनुमान गरिगलक बतवा रखल। प्री मनसून अवधिमा जो विभिन्न स्थानमा क्षति बहर लखर्से सक्कु निकाय हन तयारी अवस्थामा रह आग्रह गरिरखल। उहाँसे राहत सामग्री सुरक्षित धर ओ तथा 3 स्थान हन केन्द्र बनाकन राहत सामग्री व्यवस्थापन गर निर्देशन दिए रखल। सुरक्षा निकाय स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय गरिकन फास्ट ट्र्याकसे काम गर पर्न उहाँ जोर दिए रखल। मुख्यमन्त्री आचार्यसे विपदको समयमा स्वास्थ्य सेवा खानेपानी ओ खाद्य सुरक्षा हन प्राथमिकतामा धर पर्न बटवा रखल। वस्तहको विपदको कारण अवरूद्ध भइसकेका सड़क तथा यातायातका मार्ग तत्काल सञ्चालनमा आनकला सम्बन्धित निकाय हन निर्देशन दिए रखल। उहाँसे आफ्ना आफ्न लाइन एजेन्सी हुनकला तयारी अवस्थामा रह ओ विपद प्रति कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुई निर्देशन दिए रखल। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसे मानव अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जत्रा बेला फेद चनाखो ओ सक्रिय हुई पर्ना बटवा रखल। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 26 वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज राप्ती उपत्यका देउखरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यसे राज्य हन सही मार्गमा उभ्याइना जिम्मेवारी मानव अधिकार आयोगको रलक बटुल हुइट। उहाँसे मानव अधिकार संरक्षणका सुनिश्चितताको वातावरण घरसे शुरू हुई पर्नामा जोड़ दिए रखल। उहाँसे सुधार आवश्यक रहलक हुँसे उल्लेख गर्दै राज्य हन मानव अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाइपर्ना बटवा रखल। भदौ 23-24 गते हुइल घटनाको सम्बन्धमा आयोगसे करलक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरपर्ना कति राष्ट्र सरकारसे सार्वजनिक निकर्लसे आयोग अपनिजो सार्वजनिक कैकन राज्य उप न्यायिक गरपर्ना धारणा धरल रह। मुख्यमन्त्री आचार्यसे फरक राजनीतिक विचार धरलक आधारमा व्यक्तिगत सम्पत्ति खरानी बन्न ओ सरकारी संरचनामा भारी क्षति पुग्न दुःख धुइलक बटवा रखल। सरकारसे निश्चित लक अवस्थामा आयोगसे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गरस्याका पर्ना उहाँको कार्यालयहीन। ओ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक ओ पूर्व संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ हन मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कार्यवाहीको सिफारिस गरिराखल। गैलक भदौ 23-24 गतेका घटनाबारे गठन हुइलक अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगसे कार्यवाहीका निर्णय गरिकन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस बुझिलक हुइट। अघि प्रचलित कानूनको सजायको अव्यवस्था निविलक हर्से कानून बनाक मनफे कार्यवाही गर आयोगसे सरकार हन सुझाव देखिल बा। सिफारिश अनुसार उल्लंघनकर्ता हन बढ़ीमा 6 महीना कैद 3,00,000 रूपियाँ जरिवाना वा कम्तीमा 5 वर्ष राजनीतिक पदमा उम्मेद्वार
हुई निपैना व्यवस्था करक गिल्वा अध्ययन प्रतिवेदनको निर्णय ओ सरकार हन करगिलक सिफारिश अन्तर्गत कार्यवाही सिफारिश खण्ड आज आयोग से सार्वजनिक करलक हो। रूठाता आजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अतरह काल संजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मस्य समाचार कक्ष कसकको संग्रहणसँग मैशालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोरखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी।